0: संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास सन्धिः इत्याख्ये दशमे संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो साझा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में PM विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से PM किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारियों को कैसे सीमित किया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने कहा है कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र

0: बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 से गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप ए में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: बिहानको 7:05 भइसकेको छ। श्रोता समाचारपछि अब सुनाइरहेछौँ बिहानी सूचनाको कार्यक्रम शुभ प्रभात। खेतीपाती बारे केही सल्लाह अनि सुझाव साझा गर्नेछौँ आधुनिक गीत सङ्गीतको प्रस्तुतिको साथमा। प्रथममा सुनाउन गइरहेछौँ माया देवी ढुङ्गेलको स्वरमा यो गीत।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश. आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश. योग से जीवन बने विशेष. बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा. योग फॉर हेल्दी एजिंग. ये भरोसा हम सबका प्यारा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं. एक दिन नहीं, हर दिन योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग. इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता. यही से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश. आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.
2: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान.
3: पीएम किसान.
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे. इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी. पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है.
2: अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम किसान.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है. प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे. सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी. अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई. और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है. कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है. श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे.
6: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है. भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा.
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा. श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है.
6: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है.
5: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद

0: देश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
1: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने सातवें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
2: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पूरे जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

0: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द है, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल खत्म नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
3: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के।
2: अब सुनो समाचार।
3: नमस्कार, यो आकाशवाणी हो। 9 बजे को प्रमुख समाचार को सातमा मां सबीना गिरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आजदेखि आफ्नो गृह राज्य ओडिसाको 2 दिने भ्रमणमा जानुहुनेछ। उहाँ दिउँसो मयूरभंज जिल्लाको डाण्डबोज हवाई पट्टीमा पुग्नुहुनेछ, जहाँ राज्यका नेताहरू र वरिष्ठ अधिकारीहरूले उहाँलाई स्वागत गर्नेछन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिले रैरङपुरमा एम्स भुवनेश्वरद्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविरमा भाग लिनुहुनेछ र डाक्टर र लाभार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ज्ञान, बुद्धि र दूरदर्शिता जस्ता गुणहरू

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सन्देश अघि सुनिरहनु भएको थियो फिल्म दो रास्तेबाट लता मंगेशकर अनि मोहम्मद रफीको स्वरमा यो गीत, शब्द आनन्द बख्शी अनि संगीत लक्ष्मीकान्त प्यारेलालको।
2: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
3: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: अब अघिल्लो क्रममा सुनाउन गइरहेछौ फिल्म जीवन मृत्युबाट यो गीत, शब्द आनन्द बख्शी अनि संगीत लक्ष्मीकान्त प्यारेलालको, स्वर रहेको छ लता मंगेशकर अनि मोहम्मद रफीको।

0: नमस्कार समादरणीय श्रोता महानुभावहरू, म उमेश कार्कीडोली उपस्थित भइरहेको छु एउटा विशेष कार्यक्रमको साथमा। तमाम आदरणीय श्रोतालाई हामी आकाशवाणी खरसाङमा स्वागत जनाउँछौँ। आजको यो दिन हाम्रो सङ्गीतमय दिन हो। सङ्गीत जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो, जहाँ सङ्गीत बिनाको संसार नै अधुरो हुन्छ र मिठासपूर्ण हुँदैन। जहाँ सङ्गीत छैन त्यहाँ निराश हुन्छ, त्यहाँ दुःख हुन्छ, वेदनाहरू हुन्छ। जहाँ सङ्गीत हुन्छ त्यहाँ माया हुन्छ, प्रेम हुन्छ, खुसी हुन्छ र आनन्द हुन्छ। यस्तै साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरूको साथमा सधैँ हामीले हाम्रा श्रोतालाई मनोरञ्जन गराउनेछौँ विभिन्न साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरूसँग। र आजको यो प्रस्तुति हो ब्यान्ड मेलोडिजको। प्रत्येक यस्ता ब्यान्डहरू, युवा कलाकारहरू जसले विभिन्न गीतहरूलाई आफ्नो ब्यान्डको माध्यमद्वारा, आफ्नो ग्रुपद्वारा विभिन्न सङ्गीतहरू प्रस्तुति दिने गर्छन् विभिन्न ठाउँहरूमा। आजको आकाशवाणी खरसाङको स्टुडियोमा पनि यस्तै एक ब्यान्ड हामीसँग यहाँ उपस्थित भएका छन्। म यहाँ ब्यान्डको नाम लिन चाहन्छु। कलकत्ताबाट हुनुहुन्छ यहाँहरू विनी लाइभ एन्ड लाउड ब्यान्ड। यहाँहरूले विशेष गरेर यहाँको एउटा चिज मनपर्दो के छ भनेदेखि, यहाँले जुन चाहिँ क्षेत्रीय लोकगीतहरूलाई फ्युजनको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, अनि यहाँहरूले विभिन्न भारतको विभिन्न ठाउँहरूमा आफ्नो कार्यक्रमको प्रस्तुति दिइसकेका छन्। यसरी घुम्दै घुम्दै यहाँहरू आज आकाशवाणी खरसाङमा आएका छन् र हामीले यहाँहरूलाई आकाशवाणी खरसाङको स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। आउनुहोस्, हामी यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्नेछौँ। आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आकाशवाणी खरसाङ में।
1: थैंक यू सो मच।
0: यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ विशेष गरेर यहाँ जुन चाहिँ ब्यान्ड छ, यो ब्यान्डको टिम लिडर नेतृत्व गरिरहनु भएको छ विनी रोयले, अनि त्यसरी नै ट्राभल क्लब बक्समा तितास मुखर्जी, अनि इलेक्ट्रिक गिटारमा अभिषेक ब्यानर्जी, अनि बास गिटारमा सुब्रती सरकार, लिड गिटारमा सुमया दिपदास, अनि उकेलेलेमा सुदिप्तो चौधरी। आउनुहोस्, यहाँहरूको परिचय मैले यसरी राखिसकेँ र आज मसँग बात पनि गर्न लागिरहेको छु विनी रोय, जो टिमको यहाँहरूको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। आज हामीलाई विशेष एक कार्यक्रम है, ब्यान्ड मेलोडिज कार्यक्रमको नाम है। हामीलाई एभ्री मन्थके प्रत्येक मन्थके सुरुमै एक यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्थे। तो आपको आकाशवाणी खरसाङ में जैसे हम लोग ने आप लोग को इनवाइट किया, कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, सबको सबका मुंह में स्माइल है, इसलिए अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। एक हिल स्टेशन में आके हम गाना गा रहे हैं विद बैंड, ये हमारे लिए बहुत बड़ा है हमारे लिए। तो आपके साथ, हम सबके साथ मुलाकात हुआ, बातें होगा, बहुत अच्छा लग रहा है सब मिलकर।
0: आप लोग ने सुना है कि भारत का जितना भी भाषा है, जैसे जैसे आप लोग ने विशेष क्षेत्रीय लोक संगीत को उसमें मॉडर्नाइज करके फ्यूजन बना के भी प्रेजेंट किया। अब इसमें जैसे आपने भारत के विभिन्न राज्य में भी किया है, तो लोगों का इस पर क्या प्रतिक्रिया है?
2: बहुत अच्छे से ले रहे हैं हम लोगों को। कैसे कि होता है कि सब कोई सब जगह पे सभी कोई रहते हैं, तो सभी का गाना होना चाहिए। तो एक जगह पे अगर एक ही भाषा का गाना होता रहे तो यही मोनोटोनस काट रहे हैं हम लोग। वैसे भी जिप्सी है, मतलब घूमते ही रहते, तो सब जगह का एक मिश्रण यहाँ पे हम लोग डालना चाहते हैं।
0: लेकिन ये बैंड में एक चीज यूनिक चीज मुझे क्या लगा कि आप लोग ने जो फोक, जो लोक इस एरिया का जो क्षेत्र है उसका लोकगीत को लेके किया, इसको फ्यूजन करके करने में ये सोच कैसे है आप लोग के पास?
1: लोकगीत ऐसा होता है ना, मन से आता है, जो

0: गीत मन से आते हैं, माटी का जो गीत है, माटी में रहकर जो गीत बनता है वो ही मन से आता है। तो हम लोग इसलिए लोक संगीत हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं। इंडिया में तो बहुत लैंग्वेज लोग रहते हैं, तो हिंदी गाते रहो, राजस्थानी गाते रहो, ओनली नेपाली गाते रहो, तो बाकी सब जो भोजपुरी है, बाकी सब जो अदर्स लैंग्वेज है, तो अच्छा नहीं लगेगा उसको। तो हम लोग एक साथ मजे करके सब लैंग्वेज में गाते हैं, सबको खुशी कर देते हैं हम लोग।
1: तो आपने तो नेपाली का बात किया, तो हम लोग शुरू में एक आप लोग से नेपाली गीत सुनेंगे।
0: श्योर श्योर। 1, 2, 3, 4.

0: कस्तो लाग्यो श्रोताहरू, तपाईँहरूले साँच्चै यो गीत सुनेर मनोरञ्जन गरिरहनु भएको छ भनेर हामी यहाँसँग बात गर्छौँ। तो आप लोग ने ये बैंड का जो ग्रुप बनाए, आप लोग किस किस जगह से और कैसी सोच आ गई एक बैंड होना चाहिए?
1: सोच ऐसा नहीं आया कि बैंड करेंगे, बैंड हो गया एक के साथ दोस्ती होके सबका मेंटलिटी एक साथ मैच करते हैं, सबका लाइफस्टाइल एक साथ मैच करते हैं, सबका हाँ मजा आता है। अब जो म्यूजिक का जॉनर होता है ना, हम सब एक वी आर इन सेम बोट एक्चुअली। सो ऐसा मतलब ऐसा ही करते हैं हम लोग, घूम के गाना, सब जगह एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर करके वैसे म्यूजिक ग्रैप करके हम लोग फ्यूजन करते हैं ऐसा करके वी आर फ्रेंड्स नॉट बैंड एक्चुअली, वी आर फ्रेंड्स।
0: आप लोग जैसे यहाँ पर देख लिए दिया ने आपने विनी लाइव एंड लाउड, ये एक बैंड के रूप में या ये ग्रुप या फ्रेंड्स के इसको क्या
1: बैंड मींस? अगर फ्रेंडशिप हुआ तो बैंड होगा, अगर फ्रेंडशिप नहीं हुआ तो बैंड नहीं होगा। तो म्यूजिक ऐसा ही है, म्यूजिक के साथ फ्रेंडशिप है एंड फ्रेंडशिप मींस बैंड।
0: जैसे आप लोग ने जैसे डिफरेंट लैंग्वेज में कर रहे हैं, सिर्फ एक लैंग्वेज में प्रोग्राम नहीं करके, गाना नहीं करके आपने डिफरेंट लैंग्वेज में करे, ये डिफरेंट लैंग्वेज सीखने में, डिफरेंट लैंग्वेज के गीत लर्न करने में, सीखने में कितना प्रयास करना पड़ता है, कितना
2: ये एकदम हम लोग का जो वोकलिस्ट है विनी दी और अभिषेक दोनों का ही एकदम फोकस रहते हैं, वो लोग पूरा उठाते हैं और जो हम लोग को कनेक्ट करते हैं वो है म्यूजिक।
0: लैंग्वेज क्या होता है कि गाना इसे सीखने में कोई दिक्कत नहीं, हाँ, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन, हाँ, शब्द का जो उच्चारण होता है,
2: ये वर्कआउट करते हैं ये लोग समझते हैं, वर्ड्स का पता है, मीनिंग पता करते हैं,
3: लिरिक्स का मीनिंग क्या है वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर उसे हम लोग बार बार सुनते हैं कैसे जो गा रहा है वो कैसे गा रहा है उसको, फिर वैसे
0: गाना का क्या होता है, कोई भी गाना, जैसा भी गाना, किसी भी भाषा में गाना हो, उसका जो भाव होता है, जो फीलिंग्स होता है, सबसे वो पहले उसको समझना है, वो इम्पोर्टेंट, तब गाना का सही अर्थ निकलता है,
1: ठीक
0: है कि नहीं? तो आप लोग में ये कैसी सोच, कैसी आती है डिफरेंट लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेज में, दूसरा लैंग्वेज में जो आप लोग का लैंग्वेज नहीं और दूसरा गाना का वो भाव, वो फील कैसे
2: वही कनेक्ट करता है म्यूजिक,
3: वही म्यूजिक से कनेक्ट कर रहा है, मतलब कोई तो वो गाना पहले गाया हुआ है। ऐसे नया गाना तो हम लोग, वैसे इतना सारा लैंग्वेज हम लोग को सही में आता नहीं है, मतलब कि मदर टंग नहीं है हम लोग को, दो तीन लैंग्वेज ऐसे आता है जिसमें हम लोग खुद बना सकते हैं, लेकिन हम लोग फोक म्यूजिक इसीलिए चुने हैं कि सारे जगहों का जो अपना खुद मिट्टी का गाना है, तो वो लोग जो पुराना गाना है, जो रूट से आया है, वो चीज़ों को हम लोग सुनते हैं, उसका मीनिंग हम लोग पढ़ते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इस दो लाइन का मीनिंग क्या है, ऐसे पढ़ के उसको समझते पहले, फिर उसको सुनते हैं कि वो उसको कई संगीतकारों ने गाया होगा तो वो लोग कैसे गाए हैं, वो लोग कैसे उच्चारण किया है चीजों को, फिर वैसे वैसे हम लोग अपने आप में उसमें उसको तैयार करते हैं।
1: बोलो ना, रेशम पीरी में एक लाइन है ना, ताहा ताहा जून को कालो रात ही माँ, तो जून मींस आई थिंक चांद, मून, तो ऐसा करके सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है क्या लिखा है, वो फीलिंग के साथ हम गाते हैं।
0: एक तो चीज आप लोग को देखिए, हम लोग का एक तो चीज मुझे याद आ रहा है कि इसीलिए बोलता है कि संगीत एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ना म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो संगीत के ऐसे माध्यम है जिसे हम एक दूसरे में जोड़ जाते हैं, जैसे आप लोग ने डिफरेंट लैंग्वेज को कनेक्ट करके जोड़ रहे हैं उसी के माध्यम से और दूसरा जगह में जाके आपने उसका प्रेजेंट करा है, दूसरा लैंग्वेज में आप लोग जितना कार्यक्रम प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुति दे रहे हैं, पब्लिक में उसका रिस्पॉन्स कैसे आता है आप लोग?
2: जैसे
0: विशेष जो ऑरिजिनलिटी जो गीत है, जैसे आपने रेशम फिरी जो गाया उसका ओरिजिनल दूसरा है, लेकिन आपने उसको लेके फ्यूजन करके और उसको मॉडर्नाइज करके गा रहे हैं, तो इसमें लोगों का ऐसा ही दूसरा लैंग्वेज में क्या, तो लोगों का उसमें प्रतिक्रिया क्या होता है?
2: अभी तक हम लोग जितना भी शो किए हैं, जहाँ पे भी शो करते, सब कोई का ये फीडबैक है हम लोग ठीक ठाक कर रहे हैं कि ये मजा आ रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग रेशम फीरी गाए आप लोगों के जगह पे, तो आप लोग ज्यादा बता सकते थे आप लोगों को कैसा लगा है, तो वही हम लोगों का प्राप्ति होता है कि लोग बोलते हैं ठीक है, अच्छा है, कोई तो एक बैंड है जो सबका भाषा लेके काम कर रहा है,
3: और जिसको समझ में भी नहीं आता होगा कि ये हम क्या गा रहे हैं, वो लोग कनेक्ट कर लेता है कि हम लोग जैसे रिप्रेजेंट करते हैं उससे, वो लोग म्यूजिकली

0: उसमें और कनेक्ट कर लेता है.
1: अगर रेशम फिरी जब रिकॉर्ड हुआ था बहुत बहुत लाइक 11 और 12 इयर्स बिफोर,
2: ना ना ये तो बहुत साल
1: हो गए, हमने सुना 11 12 इयर्स का जो रिकॉर्ड है तब एक टोन था म्यूजिक का, सब ऑडियंस भी अलग था. अभी ऑडियंस इज चेंजिंग डे बाय डे, जेंजी आ गए
2: म्यूजिक के
1: साथ, उसके साथ
2: म्यूजिक का भी जो मॉडर्नाइज रूप चेंज होता है ना, म्यूजिक का रूप चेंज होता है. जैसे पहले था उस मोनो टाइप का था, अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो उसका गीत का चेंज हो के आ रहा है. ऐसे ही एक इस बार हम फिर दूसरा गाना सुनेंगे, आप कौन लैंग्वेज में गाना सुना रहे हैं अभी?
1: एक हमारे लैंग्वेज में गा दे, बंगाली.
2: हाँ ओके श्योर.

0: बढ़िया, ये जो गाना गाए ये कौन सा कैटेगरी में आता है इसका?
1: ये एक्चुअली बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो गीत होता है एकदम बंगाली में बोलता है ओपार बांग्ला एक्चुअली, तो वहाँ से जो गीत हमने गाया वो दू चाकर साइकिल, मीन्स एक बंगाली में एक टर्म है देहो तत्व, हिंदी में बोलता है देह तत्व ऐसा बोलता है, तो क्या होता है

0: लोग तो इंसान है, मानव के साथ सॉइल है जो मिट्टी है जो उसका अर्थ उसके साथ कनेक्ट करता है, जो रिलेट करता है, जो वही है देह तत्व, बंगाली में बोलता है वही गाना है फ्रॉम बांग्लादेश।
1: तो आप लोग तो बैंड इस ग्रुप चला रहे हैं, ये कब स्थापित किया आपने, कैसे कब से शुरू किया इसको?
0: 2018 में रविंद्रनाथ टैगोर का बर्थडे है।
1: तो उसे रविंद्रनाथ टैगोर के बर्थडे में आपने, जब रविंद्रनाथ टैगोर के बर्थडे में आप लोग का बैंड स्थापित किया था, शुरुआत किया, तो क्यों ना हम एक रविंद्र संगीत सुना जाए,
2: हो सकता है।
0: बहुत अच्छा लग रहा है रविंद्र संगीत कार्शियंग में आके ऑनियर कर रही हो, ये तो अनएक्सपेक्टेड, हम लोग तो नहीं गाते, सब लोग बोलते हैं रविंद्र संगीत मत गाओ, वी आर स्पीचलेस, इसीलिए जे आप कार्शियंग में ऑनियर मैंने रविंद्र संगीत आपने रिक्वेस्ट किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, कभी नहीं रिक्वेस्ट आते हैं रविंद्र संगीत फ्रॉम कॉलेज यूनिवर्सिटीज, जो यंगस्टर्स है रविंद्र संगीत मत गाओ ऐसा बोलते हैं, तो आप यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज एरिया में एक बंगाली मेनली रविंद्र संगीत आपने गाने को बोला, हम लोग जरूर ट्राई करेंगे, ये लव सॉन्ग है।

0: देश के विभिन्न भाग में जाके वो म्यूजिक से जुड़ने का
1: ट्राई कर रहे हैं।
0: तो ये तो एक बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज
1: हो सकता है,
0: क्योंकि अभी का जो माहौल है, अभी जो लोग के पास इतना स्ट्रेस है, टेंशन है, थोड़ा म्यूजिक से जोड़ के उसको कनेक्ट करके
1: कम किया जा सकता है,
0: उसका कुछ मनोरंजन दे रहे हैं ना, ये चीज बहुत बड़ा चीज है। तो इस बार हम लोग आप कौन सा लैंग्वेज में और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
2: एक राजस्थानी लैंग्वेज में
0: ठीक
2: गाना, राजस्थानी के साथ एक मराठी भी है।

0: लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: श्रोताहरूले आज हाम्रो सरकारमा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो द्वन्द्वमा हुने यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस इन्टरनेसनल डे फर एलिमिनेसन अफ सेक्सुअल भायोलेन्स इन कन्फ्लिक्ट. हामी आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेका छौँ. अब केही क्षणमा आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रेषण गरी सुनाउनेछौँ समाचार.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है. फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे.
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है. भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का स्पष्ट संदेश था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा. प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है.
3: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा.
1: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे. श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 में शुरू हुए इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं.

उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधा कृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधोरी घाट ऑनरी हार के वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु गुजरात उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मणिपुर में खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों का व्यापक तलाश अभियान जारी है। इन अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने विभिन्न भूमिगत संगठनों के 10 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया और एक अपहृत व्यक्ति को सफलतापूर्वक रिहा किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई नौसैनिक नाकाबंदी हटा ली है। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी श्री राहुल गांधी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रस्तुत गीत हजुरले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो सुनिता गजमेरको शर्मा।
1: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: हामी आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेका छौँ। समय यस बेला मध्याह बाह्र बज्न लाग्यो। अहिले बाह्र बजेर पाँच मिनट जाँदा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ अनुरोध गीतको कार्यक्रम। तबसम्मलाई केही क्षणमा सुन्नुहोस् आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति आज से उड़ीसा के दो दिन के दौरे पर रहेंगी। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तीन दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन में छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधोरी घाट ओनरीहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चार राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8,75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त

मुख्य चुनाव अधिकारी एंथेल रोथांगपुई ने बताया कि राज्य में कल तक 8,35,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों में 100% डिजिटलीकरण हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने मिजोरम के लिए मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि को पहले की 5 जुलाई से संशोधित करके 4 जुलाई कर दिया है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रुपए की एकमुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। भारत का LNG टैंकर दिशा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद आज सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंच गया। यह कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG लेकर आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28

जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

sen düdüm seyacı çıkı yiyin ha. Şimdi senle sopşu diye yedim işte neyin bari. Ben ağzı, ben de lopçum diyeyim. Eni tamam, şimdi ben zırı tambolu ya, şube kadolu ya. Çıkı, şube da lop... Rıdan çıkı, lopman gücü çeli ya. Rıdan çıkı, ben kadar şey ya ki, tönzen diye di. Şey ya ki, ben de kazı orada cöze diye di. Eni lorim tango kadolu ya, o şimdi yamalı. Mişi be, mong be. Mamba manguji yeba yibare. Ana ko lorim so nalol ya chonda chigi chigi chigi mashi be chigi sabal lagu lagu lagu lagu chani. Yundu chani mishi be char segi segi segi segi chani. Ko thama labda shube nige nimu ene chigi samlu nangi sheze deda. Labda tembe kadu ge samlu sheze nibu deda. Heba shibu chonde gedwa. Diye de ko chilo ne go nal ya chigi lu nal chigi zero sabal lu ge chigi mare. Ko ro chonda chani. Mishi shibe chadi de ya maun ma maun ya pei yudu zane mishi be chadi kora tela tuebe mishi be chadi de ko chinyun shinyun yan dwa degi yarwa zawa do shene dinan shin shene nganzu da jik semgi be jongda do shene ko tangdu mikse tonaro shene che du nyene bezu chige yin semlo jongda chaya yedabare bena jik che du lebe mishi na lung langbu tu lung langbu jie chene na lung langju me denge chaya yang che du le ya be mishi na shiga be jambu yedenge ji को क्या है ना तिंदे के वांगे यहाँ छेना ना को भी मित दुगजा चीगे बताबे मरुप छाया चले युगु दुगा को सेम ले या जुजु सांगु जुजु थया यारे न्याबा जुजु थया यारे यहाँ देख दुगा अने चुप सी गया ना गोल दा रह दा जी मेरा मुकेश है अने चुप सी दा ला ला थे मुझाना अने दे जंतु शिशो आ चमलो जंतु ना शो आ चीजे मि� सोसो रावणे छे शरण मजे सोसो रावणे छे घर शरण मजे सोसो रावणे तो आ जने ये भी इंसान है आज तो छे निंगे की बात दे बना आज छे शेष छाते साझा तो छे शेष छाते यार ने छे शेगी यार दी दिनाल ये जे ये भी मिस हमारा छे शेवा जुम्से के हमारे सोसो से बारे तो आ दोस्ती ना ना दोस्ती जिंदगी आ सांजे शरण सांजे शानाम Dāgī jīnsū jībē cānāṁ jī Dālā pēnjī sāngjēn rūpā rā shō Nō tātī nī lēn thāng bō chē Tā nībē kāpsu yāng tāgī nēshīn chē nī Tā ngā rā tū tārī Nē tōp kāwa mīrū tōp Nē sāngjē kī tēmbā tā chē Tē nā nē jā tēpā chēm pī chē Ngā nē tā nē kī rā tā chē kī Bē jū kēwā Nē pā rā bē dēmū kēwā Tōmā rā kēwā 파도 깨와 탐을 깨와 어디대기 주던 대왕 통다 파송 강게 차네 집에 이나야 원나 자네게 편법 머시게 정신제 어디대대 에나 가라 이니베 최 두두 예바데 원나 자네게 깨와 상고 인사 버시체 근데 대베 관에 근데 다리 라지 이네 라마 깨와 사다 제베 장가래야 셈 상고 찌기 인사바 셈 상고 찌기 좋아데 원나 깨와 상고 인사베 메베 메바다 제디 에네 랭이반데 젠도 장즈 상제 셔당 서제 창남라 Chanshu Pardo Dhani Gyeopso Shi Dhagi Jinsu Gyebe Sanam Gyi Dhala Penshi Sangyen Rupo Ra Sho Oh, Dhati Lengi Song Dha Sunbe Gyeopso Yang Thakki Nenshin Che Dha Nganzu Kwa Thao Bani Tu Dhata Pardo Gyeawa Lengra Mangbu Chi Lanche Tu Si Yimbari Tu Dhata Pardo Rang Jeban Zibi Jinsin Ki Shianwa La Dhani Ani Rang Kona Sam Che Dhebe Yimbari Ti Dhebe Lanche Le Ya तो तादा ये ना यां ऐने न्यू मुंबई शियावां जें कदम दिले में बच्चे चाचे तो से यंबे यंदे ऐने अदां ताजा के तंबे चंबे ऐने और ची सांचे शिशु संभव दूसरे ठेडी आर आरांस तो डावा ची यंबा ला ऐने कैसे ले यां ऐने कले कले ले याची रांचिंजिंग की निमिसी शेंचिंजिंग की पेंयुसी नी तेरे राजे थांगु शेनी यंदन लसेनी ते थांगु शे ते लाजे ले या क्यों कुछ यंदन कुंडेंगे राजे सांची जी को बां तादा थप सिमां थप रंजू वच्चा शे दूसरी इंबारे तंदे इंबारे इंदु जाने जुजुने सोवा नशीं मांग तो शायद जिसी को छिबर रंग के ठंजे तो तुम्हां शेंजी ठंजे में दिनी जीनी छिबर
kada dharamayabha shaadegi yawara ngā rānsu kyoñji khumbu shaaja dhaya dhaya dhi rānsi yabhanzi bhe lemba yinbare

द्रौपदी मुर्मू छोक तिनी मध्य प्रदेश के ओंकेश्वर तू इंटरनेशनल सिकल सेल डे शिव नेम कंगो ची मिसे जो शिचना फिफ्यू नंग जेब थंग अमेरिका ईरान तंग ट्वेंटी चुंग शिशुं ईरान की चुजिन भब्जु खा तंग तिशिन छोगा नम कंगो तमरा ची जो चीन चे युब से है नंबर जो रतिनी किसान जो खा निर्देश में ही पेशे का निर्देश शुगर धर्म साले पे उसीरी दोगा सुबह ताना वे और ये लोग भी पुलिस वाले शिक्षण नंग

0: Also slams Pakistan for sponsoring terrorism. And Mexico becomes first team to qualify for FIFA World Cup round of 32, defeating South Korea 1-0. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया जिसमें भारत फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि इसका इलाज संभव है
2: पहला बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाना और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है दूसरा व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है तीसरे प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की
2: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारम्भ करते समय जो अनेक

0: लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य 6 महीने से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुँच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
3: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़े

0: नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, एआई के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
2: Our position on Indus Water Treaty is well known.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती, जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता, जिस पर कोई जवाबदेही ना हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता
2: रहा।
1: भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताले एथेन्जल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो समर शर्मा देश वन्दना शब्द अनि संगीत रचना थियो केवी राईको। हामी आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेका छौँ। समय यस बेला अपरान्न 4 बज्यो। अब प्रस्तुत गर्न लागिरहेछौ हाम्रो अघिल्लो कार्यक्रम।
1: नमस्कार श्रोताओ, मैं आपकी संचालिका सुरक्षित तामंग की ओर से स्वागत है हमारे आज की हिंदी वार्ता में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में योगा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सचेत करना और तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। योग हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाता है। ये शरीर को लचीला बनाने के साथ साथ तनाव को भी दूर रखने में मदद करता है।

0: श्रोताओ, आज हम इसी विषय को लेकर हम वार्ता सुनेंगे। वार्ता का विषय है स्वस्थ जीवन में योग का महत्व, और इस वार्ता को प्रस्तुत कर रही है अर्चना गुप्ता। तो आइए दोस्तों, इस वार्ता को सुना जाए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम हिंदी वार्ता, जहां आज हम बात करते हैं जीवन को सफल और बेहतर बनाने के सरल तरीकों की। आज का विषय है स्वस्थ जीवन में योग का महत्व। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या हम अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान रखते हैं? सवाल है, योग क्या है? सिर्फ एक्सरसाइज या कुछ और? सबसे पहले हम जानेंगे योग आखिर है क्या। योग का मतलब है जुड़ना, शरीर मन और आत्मा का संतुलन। यह सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। मनुष्य की दशा उस मशीन के समान है, जो यदि ठीक तरह से रखी जाए तो पर्याप्त समय तक कार्य कर सकती है, और यदि देखरेख रख रखाव की अपेक्षा की जाए तो शीघ्र बिगड़ जाती है। व्यक्ति को अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त एवं कार्यशील बनाए रखने के लिए योग आवश्यक है। स्वास्थ्य और योग का चोली दामन का साथ है। सुंदर सुगठित स्वास्थ्य के निर्माण में योग सहायक है। योग ही वह साधक है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को मजबूत एवं स्वस्थ बना सकते हैं। शरीर में स्फूर्ति आती है, पाचन तंत्र ठीक रहता है, शरीर में रुधिर का संचालन ठीक रहता है, मांसपेशियां बलवती होती हैं और इंद्रियां शक्ति संपन्न होती हैं। दुनिया में प्रत्येक प्राणी का पहला सुख उसकी निरोगी काया होती है। यदि प्राणी का शरीर ही रोगी होगा तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। उसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हमारे पास हमारी आवश्यकता के सारे साधन सहज उपलब्ध हैं। हमें मलाई मेवे बादाम पिस्ते वाली कुल्फी बहुत पसंद है, और वो हमारे सामने खाने के लिए रखी हुई है, लेकिन उस समय अगर हमें एसिडिटी हो रही है, उल्टी पर उल्टियां हो रही हैं, तो क्या हम अपनी पसंद की मेवे वाली कुल्फी खा सकते हैं? नहीं। हमें जगह जगह घूमना, नई नई चीजें देखने का शौक है, लेकिन अपने घुटनों की तकलीफ के कारण हम हिलडुल या चल फिर नहीं सकते, तो हमारे घूमने का शौक बिल्कुल बेकार है। जब हम अपने ही इस रोगी शरीर के कारण कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पहला सुख है निरोगी काया। तो फिर निरोगी रहने के लिए क्या करें? सबसे पहले हमें अपने को प्राकृतिक बातों से हटाकर कृत्रिमता से जो लिया गया है उस प्रक्रिया को हटाना होगा। अपने को प्रकृति से जोड़ने का भरपूर प्रयत्न करते रहना चाहिए। प्रकृति ही तो हमारी जीवन शक्ति है। सब बताते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। प्रकृति में इनका एक सामान्य संतुलन बना हुआ है। एक प्रश्न उठता है, योग क्या हमें सिर्फ फिट रखता है या हमें अंदर से भी मजबूत करता है? जी हाँ, योग हमें बिल्कुल ही खुद से जोड़ता है, यदि और यही सबसे उसकी खासियत है। हम जानना चाहते हैं कि योग की शुरुआत कहाँ से हुई। योग की उत्पत्ति भारत में हजारों साल पहले हुई। वेदों और उपनिषदों में उसका उल्लेख मिलता है। पहले योग आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम था। सृष्टि के अनंत वर्षों के विकास क्रम में मनुष्य प्रकृति का एक दिव्य सृजन है, और यही कारण है प्रत्येक मनुष्य अपने आप में दिव्य है। इस दिव्यता का उद्घाटन ही मनुष्य का सहज नैसर्गिक धर्म है। दिव्य चिन्मय की खोज ही योग विज्ञान का लक्ष्य है। निर्वाण, विच्छेद या अलगाव नहीं है, बल्कि अपने को विश्वात्मा से जोड़कर असीम बन जाना ही निर्वाण है। यही योग है। योग का मतलब है जोड़, और जोड़ है समत्व। योग द्वारा ही हम जीवन को पूर्ण अभिव्यक्त कर पाते हैं। योग की प्रत्येक क्रिया चेतना के जागरण में सहायक है। हम कह सकते हैं चेतना का जागरण ही योग है।
0: दोस्तों, कार्यक्रम को थोड़ा सा विराम देते हैं, सुनते हैं ये गीत।

योग की उत्पत्ति का जिक्र करते समय हमें महर्षि पतंजलि का नाम भी आता है, क्या यह सही है? हाँ, महर्षि पतंजलि ने योग को व्यवस्थित रूप दिया। उनका सूत्र है योग्या श्रित वृत्ति निरोधनम, यानी मन

को नियंत्रित करना ही योग है। महर्षि पतंजलि ने योग सिखाने के लिए मुख्य रूप से 7 गुण आवश्यक बताए हैं। पहला है जिज्ञासा या मुमुक्षा, दूसरा है अनवरत अभ्यास, तीसरा है श्रद्धा, चौथा उत्साह, पांचवा स्मृति, छठा एकाग्रता और सातवां प्रज्ञा। अक्सर लोग योग को सिर्फ आसनों तक सीमित समझते हैं, यह ठीक नहीं है, लेकिन असल में योग के 8 अंग होते हैं। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में 8 प्रमुख सूत्र निरूपित किए गए हैं, जिन पर योग की विभिन्न क्रियाएं आधारित हैं, तथा इन्हें अपनाने से ही योग का पूरा लाभ हमें मिल सकता है। ये 8 सूत्र इस प्रकार हैं। यम, यम के अंदर आता है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्ते, चोरी न करना, अपरिग्रह। दूसरा है नियम, नियम के अंतर्गत है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तीसरा है आसन, आसन में है पद्मासन, मुद्रासन, सिंहासन, सुखासन, सेवाश्रम। महर्षि पतंजलि ने कुर्सी का सहारा लेकर बैठने को कहा। चौथा है प्राणायाम, श्वास और प्रतिश्वास की गति पर नियंत्रण। पांचवा है प्रत्याहार, इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस की आसक्ति से दूर हटना। छठा है धारणा, नाभि चक्र, हृदय पुंडरीक, मूर्धा, ज्योति, भूमध्य, ब्रह्मरंध्र, नाशकाग्र, स्थूल विषय से हटकर सूक्ष्म लक्ष्य का ध्यान। सातवां है ध्यान, परमेश्वर के ज्ञान का सदस्य प्रवाह, परमेश्वर में एकाग्र होना, आनंदमय, ज्योतिर्गमय एवं शांतिर्गमय का ध्यान। आठवां है समाधि, ओमकार ब्रह्म में इतना तल्लीन एवं तन्मय हो जाना कि साधक स्वयं को ही भूल जाए, भगवान के दिव्य आनंद की अनुभूति हो, यह एक पूरी जीवन यात्रा है। प्रश्न है, अब क्या हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, योग हमारे शरीर पर क्या असर डालता है? योग से हमारा शरीर लचीला बनता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, डाइजेशन और हार्ट हेल्थ भी बेहतर होती है, मेंटल हेल्थ भी आज के युग में स्ट्रेस एंजाइटी कॉमन है। योग और मेडिटेशन से मन शांत होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। योग मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्तम पद्धति है। योग ऐसा साधन है जिसके अभ्यास से लाभ, द्वेष, क्रोध, हिंसा, स्वार्थपरता जैसे दुर्भावना हटकर क्षमा शांति में बदल जाती है। मस्तिष्क की निष्क्रियता दूर होती है, बुद्धि का विकास तथा मन पर संयम रहता है। योग से हमारी कार्य क्षमता, दृढ़ संकल्प शक्ति, धैर्य, पुरुषार्थ एवं सकारात्मक सोच जैसे गुणों की अभिव्यक्ति होती है। संयमशील और सात्विकता योग से ही संभव है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। रियल लाइफ का कुछ उदाहरण देते हुए योग के बारे में समझ सकते हैं। कई बुजुर्ग जो नियमित योग करते हैं वे अपनी उम्र के बावजूद एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं। यह योग की लॉन्ग टर्म पावर दिखाता है। भगवत गीता में भी योग को समझाया गया है। गीता में योग को जीवन की कला कहा गया है। गीता में योग के 3 मार्ग बताए हैं। कर्म योग यानी कर्तव्य करना बिना फल की चिंता के, ज्ञान योग सत्य की समझ, और भक्ति योग समर्पण। एक प्रसिद्ध श्लोक है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी योग हमें हर काम को संतुलन और कुशलता से करना सिखाता है। गीता में योग का अत्यंत गहरा और व्यापक वर्णन मिलता है। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के कठिन समय में योग का मार्ग समझाया है। गीता में योग केवल आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जीवन जीने की एक कला के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें कर्म योग निस्वार्थ कर्म करना, ज्ञान योग सत्य का ज्ञान प्राप्त करना, और भक्ति योग ईश्वर के प्रति समर्पण जैसे विभिन्न मार्ग बताए गए हैं। गीता यह सिखाती है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी मानसिक रूप से शांत और संतुलित रह सकता है। इस प्रकार योग हमें यह समझाता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि हमारा मन स्थिर है तो हम जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। आज की डिजिटल लाइफ स्टाइल में हम घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, जिससे हमारा पोस्चर खराब होता है, आंखों और दिमाग पर असर पड़ता है। योग इन सब का नेचुरल सॉल्यूशन है। यह बॉडी को भी रिलैक्स करता है और माइंड को भी। योग हमारे अंदर की शांति को भी जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर है। योग के कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। योग लगभग 500 साल पुरानी परंपरा है। आज 190 से ज्यादा देशों में इसका अभ्यास होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, जो साल का सबसे लंबा दिन भी होता है। वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि नियमित योग करने से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्ट्रेस लेवल को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। योग करने से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि वह एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को भी बेहतर बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि आज कई बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए योग और मेडिटेशन सेशन आयोजित करती हैं, ताकि उनकी उत्पादकता और

0: मानसिक स्वास्थ्यता बेहतर हो सके। योग हमें अनुशासन सिखाता है। जब हम रोज एक नियमित समय पर योग करते हैं तो हमारे जीवन में नियमितता आ जाती है। हम अपने शरीर और मन की जरूरतों को समझने लगते हैं। हालांकि योग का पूरा लाभ तभी मिलता है जब हम इसे नियमित रूप से और सही तरीके से करें। योग अधिकांशतः सुबह उठकर खाली पेट करना चाहिए। शुरुआत में आसान आसनों को और प्राणायाम से शुरुआत करनी चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना चाहिए और अपने शरीर की क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि योग केवल एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसा निवेश है जो हम अपने स्वास्थ्य और खुशी के लिए करते हैं। आज हम सब अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो उन उपलब्धियों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए आइए आज हम सब एक छोटा सा संकल्प लें कि हम अपने दिन का कुछ समय योग के लिए जरूर निकालेंगे, क्योंकि योग केवल हमें स्वस्थ नहीं बनाता बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। और जब इंसान बेहतर होता है तो उसका जीवन अपने आप बेहतर हो जाता है। योग को चित्त व काया शुद्धि का विज्ञान भी कहा जाता है। योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक कंप्लीट लाइफ स्टाइल है। स्वास्थ्य ही असली धन है और योग उस धन को सुरक्षित रखने का सबसे सरल तरीका है। धन्यवाद
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे एक वार्ता जिसका विषय था स्वास्थ्य जीवन में योग का महत्व, और इस वार्ता को प्रस्तुत कर रही थी अर्चना गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ आपकी संचालिका सुरक्षित आमंग को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवाओं को असंख्य अवसर प्रदान करना विकसित भारत की मूल परिकल्पना है। युवा कार्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लिखित एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाना और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना, मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अधिक प्रभावी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए का था। पिछले वित्त वर्ष में ये बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। श्री सिंह आज नागपुर के अंबाझरी स्थित यंत्र इंडिया लिमिटेड के आयुध निर्माणी परिसर में 10,000 टन क्षमता वाले आधुनिक एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज विधानसभा में राज्य का संशोधित बजट 2026-27 पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने समावेशी विकास तथा सतत अवसंरचना के नए केरल का संकल्प लिया। श्री सतीशन ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के पहले बजट में स्वास्थ्य सेवा और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। अस्मिता चालिहा मकाओ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज क्वार्टर फाइनल में कोरिया की किम मिन सिन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताहरू, हामी आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेका छौँ र श्रोताहरूले सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम जय जवान।

धरती ता माता लयता समझे रहे, धरती ता माता लय समझे रा, धरती ता माता लय समझे रा। ओम माने प्रेमे में से लासी नम जन, ओम माने प्रेमे में लासी नम, ओम माने प्रेमे लासी नम। धरती ता माता लयता समझे रा, धरती ता माता लय समझे रा, धरती ता माता लय समझे रा। ये सहता।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताहरू, हामी आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेका छौँ। श्रोताहरूलाई अहिले सुनायौँ दलबहादुर थामीको स्वरमा तामाङ सेलो। यो मिठो प्रस्तुतिपछि अबको क्रममा सुनाइरहेका छौँ कार्यक्रम सुरसङ्गम। सुनाइरहेका छौँ पूरण प्रसादको आवाजमा केही आधुनिक गीतहरू।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MQ खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग ढाई घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
5: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
7: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
5: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के आठों राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
2: This is the country.
3: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
0: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाओ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. Says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agreed to cease fire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Hae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said, India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
2: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
4: The Prime Minister also said that during his recent visit to France and Slovakia, he felt the world is gradually recognizing the potential of India's youth. Mr. Modi said, the PM Viksit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and industry.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
4: Speaking on the occasion, Union Minister for Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandaviya said that the Modi government has implemented the 4 important labour codes for the welfare and interest of the workers. Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. The project is being developed by Bharat Coal Gasification and Chemicals Limited, a joint venture of Bharat Heavy Electricals Limited and Coal India Limited. It will produce 2,000 tons per day of ammonium nitrate using indigenously developed coal gasification technology. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhuvaneshwar Satellite Centre and a mega health camp at the subdivisional hospital in Rai Rangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. She also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining affected villages in Kusumi block, the Brahma Kumari's Matrushakti Bhavan, a special circuit house, and the newly operational Rai Rangpur Police District. The Supreme Court today ruled that the right to work on a demarcation

0: छायागीत के सुनने वालों को राजुल का नमस्कार। ये रात की चादर में छिपी आसमान से झरती हुई चांदनी का लहजा, ये रुक रुक कर चलती हवाओं के झोंकों की महक, चाहतों के नीड़ में कुछ बुने कुछ अधबुने से ख्वाब, और उनमें कुछ लरसते जज्बातों की मीठी सी चहक, कहती है वो दिल की जुबां जिस पर कुर्बान है ये सारा जहां।
1: जब मोहब्बत जवान हो

एक साथ जिसके होने से वीराने भी गुलजार हो जाते हैं, दिल में महक उठते हैं कितने अरमा, और खुशबू आंखों में उतर आती है। बातों के सिलसिले में अक्सर वो एक नाम बार बार आता है, और जिंदगी कितनी खूबसूरत नजर आती है।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत।

रात हर रोज सजाती है एक नया ख्वाब, और इन आंखों ने किया है सिर्फ उस रात का इंतजार, जिसके ख्वाबों में हो बस तेरा ख्याल, धीरे से बयां हो जाए वो शबनमी एहसास। आज तो वही मन्नतों की रात आई है, संग उन्हें कदमों की आहट लाई है।

मत वो पाक जज्बा जिसके कदमों में झुक जाता है आसमां, यही है वो सबसे अजीम लफ्ज जिसमें सातों समंदर और ये पूरी दुनिया समा जाती है। अगर सिमट जाए तो एक नन्हा सा दिल काफी है जिसकी हर धड़कन पर लिखा हो तो सिर्फ मोहब्बत।